राजगुरु सुखदेव सराबे उद्यम दा की कहना, भगत सिंह ने सदा दोस्तो 23 साल दिया रहना। लोकी नाम शहीदां दा सुचे मुंह लैंदे ने, मर जांदे जो देश लई ओ सदा जिउंदे रहिंदे ने।